करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: बिल्कुल दोस्तों, हनुमान जी के शुभ नाम के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू नो दैट्स द बजरंग बाण इन द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर। और कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब इस अंतराल के बाद।
1: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
2: Hi, this is Michael Owen, Hollywood Bets brand ambassador. Being a champion, I know the best performances come from making the right decisions on and off the pitch. Enjoy the game, enjoy the excitement, but play responsibly. Gambling responsibly is about staying in control so you can enjoy it your way. If you or someone you know needs support, help is always available. Call the South African Responsible Gambling Toll-Free Counselling Line on 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
3: You're listening to Geetanjali, Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
4: At Jayashree's Rivage, shop stunning festive looks in store and online now, where tradition meets fashion. Jayashree's Rivage.
0: बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ। एज ऑलवेज वी शेयर विद योर ब्यूटिफुल थॉट इन द हिंदी लैंग्वेज एंड टुगेदर वी लर्न सम हिंदी विद दैट ब्यूटिफुल थॉट। और आज के खास कलाकार हैं म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन जी। ही वॉज बोर्न ऑन द 1st of October एंड वी शेयर अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एस डी बर्मन जी एंड ऑफ कोर्स शेयर विद यू हिज म्यूजिक एज वेल। और प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम एक बार फिर से हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडियम के साथ। और आज का एडियम है आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना, व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? एंड इफ यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन एस डी बर्मन जी और डी को टूडेज इडियम, रिमेम्बर दैट आवर व्हाट्सएप नंबर इज 0716137803। एंड वी ऑल्सो हैव सम कम्युनिटी न्यूज टू शेयर विद यू, बट राइट नाउ चलिए हम थोड़ी सी हिंदी सीखे इस नेक विचार के साथ। And it is now time for us to learn some Hindi. And today we have a beautiful thought that deals with the concept of asking for forgiveness and what the real meaning is when one asks for forgiveness. So as you do know, we always share with you a beautiful thought in the Hindi language. Thereafter, we give you a translation of that thought into English. And then we work out some grammar structures and, of course, meanings of some of the words that have been used in the thought. So today's thought reads like so. माफी का मतलब यह नहीं है, माफी का मतलब यह नहीं है कि आप गलत है। माफी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। So, all that into English means, asking for forgiveness doesn't mean that you are wrong. Asking for forgiveness means that you value your relationships more than your ego. Okay, I think you'll agree with me. That's a fabulous thing to remember at all times, at any given time. So, the first sentence says, माफी का मतलब यह नहीं है. So, माफी means forgiveness. मतलब means the word mean. And so, माफी का मतलब यह नहीं है. So asking for forgiveness is not this, कि आप गलत है. So it doesn't mean that you are wrong. Wrong is contained in the word गलत. माफी मांगने का मतलब है. Asking for forgiveness is, and मांगने means asking, right? So माफी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। सो अपने रिश्ते को, योर रिलेशनशिप्स, रिश्ता मीन्स रिलेशनशिप, अपने अहंकार, अहंकार रिफर्स टू ईगो, वंस प्राइड, अधिक महत्व देते हैं. अधिक मीन्स मोर एंड महत्व इज वैल्यू, मीनिंग यू गिव योर रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप्स मोर वैल्यू देन योर ईगो. आई थिंक यू विल अग्री विद मी, ट्रूली ट्रूली अ ब्यूटिफुल थॉट. सो वंस अगेन इन हिंदी इट सेज, माफी का मतलब यह नहीं है कि आप गलत है, माफी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं. एंड ऑल ऑफ दैट इन इंग्लिश मीन्स आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस मीन्स दैट यू वैल्यू योर रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो. सम वेरी गुड वर्ड्स, माफी मीन्स फॉरगिवनेस, मतलब इज मीन्स मीन टू मीन समथिंग, मांगने मीन्स टू आस्क. देन वी हैव द वर्ड रिश्ता और रिश्ते व्हिच मीन्स रिलेशनशिप. अहंकार मीन्स ईगो, द अदर वर्ड इज अभिमान. अधिक मीन्स मोर एंड महत्व मीन्स वैल्यू. सो सम वेरी वेरी गुड वर्ड्स देयर फॉर अस टू लर्न फ्रॉम टुडेज एडिशन ऑफ लर्निंग हिंदी इन लर्निंग हिंदी ऑन गीतांजलि ऑन लोटस FM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं. चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं किशोर जी और लता मंगेशकर जी की रूहानी आवाजों के साथ, और बोल है तेरे चेहरे से, एन एब्सोल्यूट क्लासिक.

0: बिल्कुल दोस्तों, आज के खास कलाकार थे एस डी बर्मन साहब, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी द टू सॉन्ग्स दैट वी प्लेड फॉर यू आर एब्सोल्यूट क्लासिक्स, एंड इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन जनरेशन यू विल नो दैट दोज सॉन्ग्स रियली हेल्प्ड कीप द हिंदी लैंग्वेज अलाइव, पर्टिकुलरली इन अ प्लेस लाइक साउथ अफ्रीका विद दिस लिटिल कॉन्टैक्ट विद द लैंग्वेज. जी हाँ, प्रोग्राम है गीतांजलि और कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बार फिर से, और ये होगा इस अंतराल के बाद.
1: Lotus FM. Share the experience.
0: तो प्रोग्राम के की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा कि इस idiom का मतलब क्या है, और आज का idiom है आसमान पर चढ़ना. आसमान पर चढ़ना. सो एज यू डू नो एवरी idiom हैज figurative एंड literal मीनिंग, बट बिफोर वी शेयर दैट विद यू लेट्स टेल यू हू आर द गुड फोक हू got this correct today. Okay, they are Zakhira from Johannesburg, Ayla from Johannesburg, Preetha from Johannesburg, Anil from Johannesburg, Vijay from KwaZulu-Natal, and Professor Dawlat from KwaZulu-Natal as well. So, very well done to all of you. So, आसमान पर चढ़ना, as I said to you, there's always two meanings to idioms. There's the literal and there's the figurative. So, आसमान पर चढ़ना, the literal meaning would be to climb onto the clouds. आसमान is a cloud and चढ़ना means to climb. So, when one climbs onto the cloud, one is actually looking at everyone as though they are way above everybody else. So that simply will translate into a figurative sense, which would say that somebody has become too arrogant about where he or she is at the moment. So it basically means to show a great sense of arrogance, a great sense of pride. So how can one use this in a sentence? We could say, Amir banne ke baad wo bilkul aasman par chadh gaya. That simply means, after becoming rich, he completely, looked down upon everybody. He completely became totally arrogant and full of himself. So, if you're talking about a he, then you'll say, aasman par chadh gaya. But if you want to refer to a female, you would say, Amir banne ke baad wo bilkul aasman par chadh gayi. Gayi, because we are talking about a female. Another example, safalta paane ke baad wo bilkul aasman par chadh gaya. Safalta means success. After becoming success, safalta paane ke baad, after becoming success, wo bilkul aasman par chadh gaya. Same as the one we've done previously. It's become totally arrogant and thinks very little of everybody else. And if you want to refer to a female, you would say, safalta paane ke baad wo bilkul aasman par chadh gayi. So there you go. That is what aasman par chadh jana means, is to become totally arrogant. जी हाँ, प्रोग्राम है गीतांजलि और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आशा भोसले जी की रूहानी आवाज के साथ.

बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और खेद की बात है मगर समापन की घड़ी करीब आ गई है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभरात्रि कहनी है. आई डू वांट टू रिमाइंड यू दैट आफ्टर द 7 PM न्यूज विद सुरेश यू कैन लिसन इन टू टॉक एट 7 विद आवर वंडरफुल टॉक टीम. अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभरात्रि. और हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं शशिका मूर्त जी की रूहानी आवाज के साथ. नमस्कार.